0: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछा से शुरू करल मने घर सिर्जा सिकल
1: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
0: मिस्तरान बर्जन का ना घर हेरो ना पटा सुगुर बनेला बाट आलमोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना वट्टफे पटानी हुई कि गुंगवा बुरो हो ना कबू कहो र घूम जाए तो था पाए
2: यूपीबीसी ब्रांच के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए
1: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848143426।

0: का पिए रही था कभी पेंसिल रही था कभी झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटीन गतिलो ठाउं से झोला अंदर से तो लड़का सामान नहीं है रे
1: ओहो ये बुढ़ाल लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभू लड़का कभी हेरा कई था कभू पेंसिल हेरा कई था कभू झोले फटा कई था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिक था
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ हो टीकापुर मरलक रट गया झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरस गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल ले रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटी ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रत गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाऊँ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐटीबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के बिहानी 9 बजे के खोज खबर में अपनी हुकन स्वागत बा खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम अपने हुक्र सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेघाट के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हम पात्र और नेपाली पात्र में फेसिलिटी बाटी खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से गर्मी में कक्षा में बैठना गाह्रो तापक्रम 40 डिग्री ऊपर पुगल पास पठन पाठन में समस्या कञ्चनपुर में बघुआकी आक्रमण से 4 जना घाइते कक्षा 12 के नतीजा 45 दिन भीतर सार्वजनिक हुईना ओ प्रतिनिधि सभा और राष्ट्रीय सभा के बैठक बैठी पूरा खबर कैलालीमा गर्मी बढ़ल बा गर्मी बढ़ल संग दिवस के समय में विद्यार्थी अध्ययन में समस्या समेत हुई लागल बा टीकापुर के कई विद्यालय में एक कक्षा में ढेर विद्यार्थी संख्या हुईना तर पंखा कम हुईलक गर्मी में अध्ययन में समस्या हुई लगलक वहां क्रबोटिलो बाट गर्मी के समय में विद्युत अनियमित हुईलक विद्यार्थी फिर बढ़ी समस्या हुना कर कैलाली के तापक्रम 40 डिग्री सेल्सियस ऊपर पुगल बा जल तथा मौसम विज्ञान कार्यालय अतरियाकीय न्याय मौसम सहायक वीरेन्द्र प्रसाद कुशहा बाहक के अनुसार सोमवार कैलाली के तापक्रम सोमवार 41.4 डिग्री सेल्सियस मापन हुई रहा फिर आईतवार 40 डिग्री सेल्सियस पुगल रहा मंगलवार अधिकतम तापक्रम 39 से 41 डिग्रीसम पुगना मापन करगिल बार 40 डिग्री के ऊपर से तापक्रम पुगल पास पठन पाठन प्रभावित हुई लागल बा खड़क स्मृति मावी अमित परियार एक कक्ष में विद्यार्थी संख्या 80 से ऊपर हुईलक अध्ययन में समस्या हुई विद्यार्थी बेरा महीना बेहोसिना दशिनी समस्या हुई लगबोटिलो बाट राष्ट्रीय मावी मणिकापुर के अनुष्का चौधरी एक कक्षा में ढेर विद्यार्थी पंखा के संख्या कम हुईलक बत्ती गैलक अभिन कठिन हुईलक बोटिलो बाटी त्रिभुवन मावी विद्यार्थी संजीता चौधरी विद्यालय के पंखा गतिलो नई हुईलक गर्मी समय में हिना कलक बोटिलो बाटी कालिका आधारूल विद्यालय के विद्यार्थी अनुष्का बिक कक्षा मतीन पंखा हुईल से फिर दुई ठोकेल से चलना बिजुली गैल पाछ पंखा बिना बैठा पर्लक अध्ययन में समस्या हुईना करदाटके बोटिलो बाटी जनजाति आधारभूत विद्यालय के मिस्टिना संजियाल कक्षा कोठा में हुईलक 4 पंखा में 2 किलिक चलना को नोहर बैठना विद्यार्थी गर्मी के समस्या हुईलक कर्दारी बोटिलो बाटी विद्यार्थी दिन के 12 बजे पास गर्मी सहस गाह्रो हुईलक विद्यालय में जूर पानी के सुविधा नई हुईलक गुनासो कल बाट यहां ढेर विद्यालय में दिन के संचालन हुई हुई बा जेठ के अत्याधिक गर्मी के बेला में यहां बिहान की कक्षा संचालन करलक न हुई दिन के बाल बालिका गर्मी सताइना यहां के विद्यालय में टीन के छाना हुईल अभिन बिजुली के गैल बेला बैठना कठिन बार विद्यालय के चाहल अनुसार बिहान के दिन के कक्षा संचालन करना सेकना टीकापुर नगरपालिका जनल बा विद्यालय में पंखा लगायत के बाद विद्यालय के व्यवस्थापन कर पन्ना समस्या हुईलक पालिका सघैना कक्षा संचालन के अवस्था के अनुसार बिहान के दिन के कक्षा संचालन कर सेकना शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी बोटिल बाट कञ्चनपुर जिल्लामा बघुआकी आक्रमणमासे नाबालक सहित 4 जना घाइते हुलबाट मंगलबार सन्झ्याक महेन्द्रनगरमासे बेलडादीतर्फ जैती कलक अवस्थामा सुखलाफाटा राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र अन्तर्गत कालिकी छेनलकह बघुआकी आक्रमणसे उहाँहरूक घाइते हुलबाट कालिकीसमासे गरीब 2 किलोमिटर दूर निकुञ्ज क्षेत्रके हुलाकी सड़कमा बघुआकी आक्रमणमासे कलक मोटरसाइकल चालक बेलौरी नगरपालिका 9 खजुवाके वीरेन्द्र ठगुन्ना उहाँके श्रीमती कल्पना ठगुन्ना 2.5 वर्षीय छावरी एनसौ 14 वर्षीय भान्जी आरुषी साहू खाइती हुलबाट सन्ध्या गरीब 7:30 बजे हो बघुआके मोटरसाइकल चालक ठगुना के हातमा आक्रमण कलक सवारी अन्दी होके दुर्घटना हुलक प्रहरी जनैलबा चालक ठगुना दाहिनहा ग्वारा दुनू हात तथा शरीर के ढेरसिन भागमा चोट लगलको अवस्था सामान्य रहलक जिल्ला प्रहरी कार्यालय कञ्चनपुर के प्रमुख प्रहरी परीक्षक नेत्रमणि गिरी जानकारी दिलबाट ओस्तका पाछा सवार उहाँकी श्रीमती ओ छाओके कपारीमा वा अनुहारमा गोरामा चोट लगलाको अवस्थामा मध्यम रहलक उहाँ बोटिलोबाट पाछक सवारी भान्जी आरुषी के साहुके कपारीमा अनुहार ओ हातमा चोट लगला से फे अवस्था गम्भीर रहलक प्रहरी जनैलबा बघुआके आक्रमणमासे घाइते कोनके महाकाली प्रादेशिक अस्पतालमा सामान्य उपचार पाछा धनगढ़ी स्थित माया मेट्रो अस्पतालमा थप उपचार भेटिरहल जिल्ला प्रहरी कार्यालय जनैलबाट राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के नतीजा परीक्षा उराई लग्न 45 दिन भीतर सार्वजनिक गर्न हुल्बा बोर्डकी नतिजा प्रकाशन सम्बन्धी काम तीव्रता दिलक बोटिलोबाट परीक्षा वराइल दुई हप्ता केही खुल्बा यही बीचमा बोर्ड नतिजा प्रकाशन संघ सम्बन्धित 50% थिए ध्योर काम मरेलवा बोर्डकी परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्माके अनुसार उहाँके उत्तर पुष्टिका परीक्षणके काम आधा से ध्योर बढ़ी हो सकलवा परीक्षण हो सकलक उत्तर पुष्टिका के प्राप्त संरक्षण समत उहिलक कम्प्यूटरमा प्रविष्ट गर्न कार्य समेत ओरेलोबाट जुन विषय के उत्तर पुष्टिका परीक्षण ओरेना वकर सम्परीक्षण फे तत्काल शुरू गर्न हो सम्परीक्षण ओरेना लघ प्राप्त अंक कम्प्यूटरमा प्रविष्ट के काम हुटिरहल शर्मा जानकारी दिएल नतिजा प्रकाशन हाली बनिना बोर्ड परीक्षा ओरेलसे ओहो दिनसे नै उत्तर पुष्टिका परीक्षा शुरू गर्ल रही मुलुक भरके धेरोसिन 42 केन्द्रमसे उत्तर पुष्टिका परीक्षण हुटिरहलबा नियन्त्रक शर्मा फे नतिजा प्रकाशन के काम परीक्षा ओरेल 45 दिन पूरा पुगल नै हो ओरायल समूह से हाली प्रकाशन गर्न काम कति हलबाट के परीक्षामा मुलुक भरमसे 4,18,000 परीक्षार्थी सहभागी हुल रही बोर्ड के यह चो माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासी के नतिजा में फिर परीक्षा और लग 29 दिन में प्रकाशन कला रही जुन यासी के इतिहास सबसे छोट समय में नतीजा प्रकाशन हुई रहा इनसे अगर यासी कक्षा 12 के परीक्षा के नतीजा प्रकाशन होना सामान्यतया परीक्षा और पास 3 महीना अलग अलग कर खोज खबर मैं विश्राम विश्राम पास फिर से भी सुनते रहे सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
2: सीटीभीटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी 30 जना सामान्य चिकित्सा एचए 40 जना नेत्र विज्ञान ओए 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी डीपीएस 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गते देखि
1: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
2: आवेदन फारम शुल्क रु 1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.cetvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि एसएका कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: एसई एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0969900044 9858700044 9847202740 9642833921 र 9659963520
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
4: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849585808
5: कर्णाली नमुना मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाड़ीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू:
5: फराकिला कक्षाहरू,
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको,
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको,
6: खेलकुद सुविधा,
5: कम्प्युटर शिक्षा,
6: स्वच्छ पिउने पानी,
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 98584-24167।
5: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
7: टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालय टीकापुर कैलालीको बन्द सत्र हुने बारेको सूचना। टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको जेठ 9 गते छैठौं चुनावी साधारण सभामा विधान बमोजिमको गणपूरक संख्या अपुग रहेको हुँदा तपसिलको मिति स्थान र समयमा बन्द सत्र हुने भएकाले पुस्तकालयका आजीवन र संस्थागत सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू: हाल विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा हाल विधानको कार्यसमिति गठनको दफा 16 को उपदफा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा तपसिल, मिति 2083 साल जेठ 14 गते, समय बिहान 8 बजे, स्थान टीकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको सभा हल।
0: हाल नेपालमा पश्चिमी वायु, स्थानीय वायु तथा नेपालकी पूर्वी भूभाग लग्नचापीय क्षेत्रको प्रभाव रहलबा। यगर प्रभाव देशकै पूर्वी भूभागको हिमाली तथा पहाड़ी भूभागमा वर्षा हुटिरहलबा। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकै अनुसार कोशी, बागमती ओ गण्डकी प्रदेश लगायत लुम्बिनी, कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी हिमाली ओ पहाड़ी भूभागमा साधारणतया बद्री लग्न हुलबा। कोशी, बागमती ओ गण्डकी प्रदेशकी हिमाली ओ पहाड़ी भूभागके कुछ ठाउँमा मध्य प्रदेश लगायत कोशी, बागमती ओ गण्डकी प्रदेशकै तराई तथा लुम्बिनी, कर्णाली ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकी हिमाली ओ पहाड़ी भूभागके कम ठाउँमा मेघगर्जन चट्याङ सहित मध्यमसम्मकै वर्षा हुलबा। तर लुम्बिनी ओ सुदूरपश्चिम प्रदेशकै तराई भूभागमा गर्मी बढ़ी रहलबा। कुछ दिन हेर गर्मी बहरला, जनजीवन कष्टपर बनलबा। देशकै अन्य भूभागमा वर्षा हुलेसफे सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेशकै तराई जिल्लामा वर्षा निहुलक, तापक्रम वृद्धि हुटी रहलबा। एकक्रम अभिन कुछ दिन चलना विवाह रात से सुदूरपश्चिम लुम्बिनी प्रदेश तराईकी जिल्लामा फे बद्री लग्न ओ हल्का पानी एना सम्भावना रहला। कुछ राहत महसुस हुनका के मौसमविद रोजन लामी छाने बोटिलबाट। टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 स्थित कालिका आधारभूत विद्यालयकी व्यवस्थापन समिति ओ शिक्षक अभिभावक संघ संगठन हुलबा मंगलबार हुलक अभिभावक भेला खगेन्द्र बहादुर साउदकै अध्यक्षतामा विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन कलबाट व्यवस्थापन समितिकै सदस्य हुगनमा हिउँदल कडायत, किमा चौधरी, गीता सुनार, दीपक चौधरी ओ शिक्षक प्रतिनिधि शान्ति काफ्ले रहलबाट अस्थक नैना जेसीकै अध्यक्षतामा शिक्षक अभिभावक संघ गठन हुलबा। संघके सदस्यमा रतन बहादुर रोकाए, धन बहादुर रोकाए, पसले आउजी, मोहन सिंह परियार, रमिला ठकुल्ला, पार्वती चौधरी, अनिता चौधरी, शिक्षक प्रतिनिधि आशा भट्ट चयन हुलबाट, नयाँ सरकारकै विद्यालयमा पढ़िरहल बालबालिकाकै अभिभावक हकेलिक, व्यवस्थापनमा समितिमा धरना नीति के अनुसार सक्कु पदाधिकारी हुक्र, अभिभावकमा से 6 करोड़ कलक, विद्यालय प्रधानाध्यापक जोगी रावल बटिलबाट, देश सदस्य सीत आउजीकी अध्यक्षता महिलक भेलामा, टीकापुर नगरपालिकाकै शिक्षा अधिकृत नरेश अवस्थी प्रमुख अतिथि ओ टीकापुर नगरपालिका वडा नम्बर 2 के वडा अध्यक्ष दीपक चौधरी विशिष्ट अतिथि रहल रहे। कार्यक्रम के संचालक शिक्षक अशोक बहादुर विक कर्ल रहे। खबरमा फेरसे विश्राम विश्राम पाछ फेरसे विसुन्ति रवि सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
8: जब जब गर्मी महिना आउँछ तब तब अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरूको याद आउँछ। म्याङ्गो, लिची, कोला, स्ट्रबेरी, कुल्फी, चोकोबार, चोको फनबार, आहा कति मिठो, मलाई त साह्रै मन पर्छ। यति मात्रै कहाँ हो र, शुद्ध दूधले बनेको अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमको खोवा कुल्फी कर्नेटो र पार्टीहरूको लागि फ्यामिली प्याक पार्टी प्याकका सुविधा हुनुका साथै अन्य विभिन्न फ्लेभरका आइसक्रिमहरू र सादा आइस बलक पनि उत्पादन गरिन्छ। मैले त वर्षेनी खान्छु। अब खाने पालो तपाईँको जुन ठाउँ जानुहुन्छ उही ठाउँ पाउनुहुन्छ अमूल्य ब्रान्डको आइसक्रिमहरू। एकचोटि खोजी खोजी खाऊ है।
9: यदि तपाईँ अमूल्य ब्रान्डका आइसक्रिमहरू बिक्री वितरण गर्न चाहनुहुन्छ भने धरौटी राखेर डिप फ्रिज उपलब्ध गराउने सुविधा रहेको छ। सम्पर्कको लागि बर्दादेवी डेरी उद्योग टिकापुर 1 ब्लक नम्बर 13 सम्पर्क नम्बर 98584 89455 र 98673 69622।
8: रियल मिल्क रियल आइसक्रिम अमूल्य आइसक्रिम खोजी खोजी खाऊ यी ब्रान्डका आइसक्रिमहरू जहाँ पनि उपलब्ध छ।
10: जानकी गाउँपालिकाको गाउँवासीहरूमा हार्दिक अनुरोध।
11: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हक धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको हकको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075 बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने ऐन 2056 स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउनका लागि गाउँपालिका तत्पर रहेको हुँदा 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरी गराएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकाले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउनका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। साथै बालबालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर ग्यारेज होटल कारखाना गिट्टी बालुवा घरेलु कामदार गाडीमा सहचालक आदिमा नलगाउन 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई कुनै पनि निकृष्ट श्रममा नलगाउन धूम्रपान मद्यपान स्वास्थ्यजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बालबालिकालाई प्रयोग नगर्न हुन र अनिवार्य विद्यालय भर्ना गराई नियमित पठन पाठन कार्यमा संलग्न गर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराए कानून बमोजिम कारवाही हुने बेहोरा समेत सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
10: अध्यक्ष गणेश चौधरी बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका समिति।
12: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
13: मै नै जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छू
12: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
13: ए हो दादू अपन अनुहार बिगर के परेशान रहू तब तो मैं अब ही जाए।
7: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 98600-71024 ओ 98046-77417।
0: संघीय संसद के दुनू सदन के बैठक आज छुट्टा छुट्टे बैठक हुनबाट संघीय संसद सचिवालय के अनुसार प्रतिनिधि सभा के बैठक बिहान के 11 बजे हो राष्ट्रीय सभा के बैठक दिन के 15 बजे बैठक हुनबाट प्रतिनिधि सभा की बैठक में राष्ट्रीय सभा में उत्पत्ति हुलक अभौतिक सांस्कृतिक संपदा संरक्षण विधेयक 2081 के संबंध में राष्ट्रीय सभा मसे प्राप्त संदेश सहित के विधेयक टेबुल करना संभावित कार्यसूची रहलबा संघ अर्थ मंत्री डाक्टर सोनी मुआगले आर्थिक वर्ष 2082-83 के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना हुलबाट संसद सचिवालय के अनुसार आज के बैठक में सूचना तथा संचार मंत्री डाक्टर विक्रम तिमलिसेना राष्ट्रीय सभा मसे उत्पत्ति हुलक चलचित्र विधेयक 2082 के ऊपर विचार करना कहिके प्रस्ताव पेश करना हुईना कार्यसूची में बा संघ राष्ट्रीय सभा की बैठक में अर्थमंत्री डाक्टर सोनी मुआगले आर्थिक वर्ष 2082-83 के आर्थिक सर्वेक्षण पेश करना हुईबाट मंत्री मुआगले प्रतिनिधि सभा मसे संदेश सहित प्राप्त वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 के ऊपर विचार करना कहिके प्रस्ताव मफे प्रस्तुत कर हुईना संभावित कार्यसूची में रलक जनेरबाट। यह समाचार संघ खोज खबर वराली जनासे पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो गर्मीमा कक्षामा बस्न गाह्रो, तापक्रम 40 डिग्री से ऊपर पुगेपा छ पठन पाठनमा समस्या, कञ्चनपुरमा बगुवाको आक्रमणमा से 4 जना घाइते, कक्षा 12 की नतिजा 45 दिनभित्र सार्वजनिक हुन, प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभाको बैठक बैठी। दिटा बक्ला खोज खबर अत्र प्राविधिक मित्र छपिलाल चौधरी धन्यवाद। दिटी अबक्ला खोज खबर से मैसिता चौधरी विदा हेटू। एक 12 बजे की खोज खबर सुना सिग्बी सामुदायिक रेडियो टीका सुनती रवि।

0: रोका रोका रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
5: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैठे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि थे लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
4: ऐसी गतिविधि कोई कैना करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी ओसीएमसी स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
5: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय
4: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली

0: काकी कमल आइन भूख खाइल बाटो त
1: हेरी न काका काई फुला टुरे बारी मा गेल रही सबो काट देली बीस निकाल देवी की कई के लेके आयल बाटो
0: सबो कटलक बीस तक उपचार करो तो सर्वदम सब उपचार केंद्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा कार्य प्राप्त चिकित्सक हूँ दिखाया सब पकटलक हो कि नहीं हो के पता लगा कर सर्वदम सब उपचार में प्रयोग है ना एंटी भेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केंद्र के विषय में मैं फिर सुनल कर रहा हूँ
0: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केंद्र ले जा रहा है नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी भेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्त चिंता नहीं पड़त
1: भाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आप समय लागत से था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केंद्र में ले जा दी रे बाबू संदेश झट्ट बाहर आ
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमहेन का समय में जो उपचार के ख जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीभेनम निःशुल्क उपलब्ध करेला बा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहरा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेटा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: पर कान्छाशालाको बिहाको न्युज आएको छ कसो हो त जाने विचार छ कि नै त
5: आफ्ना कान्छा भाइको बिहा नगइजन पनि भएन जाउँ भने भयाको मंगलसूत्र पन माथि गयो
4: यतिका लागि त सामुएल जोलस बनेको बरु अहिले जाउँ एक दुई दिनमा त फ्याट्टै बनाइहाल्ला छन् त्यहाँ
5: आज त सन्त्याका बाले मनकै कुरो हर्यो बाई जाउँ
6: सामुएल ज्वेलर्स सुनचारीका सम्पूर्ण डिजाइनका गरगहना बनाउनुका साथै सुनचारी खरिद बिक्री पनि गरिन्छ प्रोप्राइटर तिहारी सिंह सुनार सम्पर्क नम्बर 9868-44-1208 9846-39-261
7: 80% रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
8: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूवी र ओजोनेटेड सहित रिवर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
9: प्योर ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
7: डेलिभरीका लागि
9: ड्रिंकिंग वाटर एक्वा शीतल
7: टिकापुर कैलाली
10: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9870-10672
11: स्वास्थ्यका लागि पानी

0: मौका पिए रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज इठा कहा कना हो बाबा के होस्ट बाटिन गटिलो ठाव से झोला अनल से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर भर थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गया झोला उद्योग में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला अनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस का टस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुही
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गैया झोला उद्योग में रख गैया झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फे करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: बाबू ए बाबू कल मनीष मेडिकल में जाइस तो
4: मैं नहीं जाए वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
3: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
4: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए
5: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खटीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड कापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: किजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: स्वास्थ्य केन्द्र पुगैदी ऐ पारस तू घर डाबु हन मोटरसाइकल ले काएको हो त
2: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँमा सुताए यो झल्याङ झुलुङ निकराख न मारी काटीले ओही हन हौ दिहेटु फिल्लीमा काटला खल सोइटीबा काटल ठाउँमा न छु चलाइ निउइन
1: अब मै विवेक हन सजिल हुइना कै ख वाकर कसकेल पिटी ता धीरे धीरे खोल देटु ओ घरी वो मुन्द्री फेक खा देहम
2: बिठारो छन् मै यही बेला विवेक क जुत्ता ऊ मजा धीरे धीरे निकाल देहे
3: युर्चसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रह समय में जो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मन यहाँ फे बचाई से जिठा सफवा कटलक मन यहाँ झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
4: विश्वास लग्नाओ सही जानकारी पाइक लाग लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई लाग आधिकारिक वेब पेज snackbite.nepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिहे छ जिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेण्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।

0: कानून कलिक भ्रष्टाचार रोक नै सेकी जब सम हमरे सबको भ्रष्टाचार विरोधी नै हुईबी भ्रष्टाचार करुया मनै न खुलके विरोध करी। भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सबको जाने सहयोग करी।
1: अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकी कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: जुनसुकै बाटोको लागि बनेकै र सबैको लागि भनेकै होन्डा एसपी 125 बेस्ट राइड लोएस्ट मेन्टेनेन्स कस्ट बेस्ट एक्सचेन्ज भ्याल्यु बेस्ट माइलेज पावरफुल पर्फर्मेन्स मात्र रु 2,99,900
1: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका ओ शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार ओ नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो
2: कोट पेट धक्का मुक्का चोट पुगैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरजस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नाई देना बोले नाई देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई
1: ऐसी गतिविधि कोई कैना
3: समुन्नत समाज का लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज

जिगुर बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपन के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य में बीसी आवाज सामुदायिक रेडियो टीका प्रेर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम स्वर्णिम के सलाह के बैठल सकू रेडियो प्रेमी मईगर श्रोता संग स्वागत के संगे अभिवादन कर चाहूं। मैं मिशन अमी के टेक में बैठकर साथ देते बाबू रत्नापुर मगर और मैं बाबू अपन के अपने संग्रह मैं मिशन संगारे कसिन बहाल खबर बिल्कुल कुशल मंगल आराम हुई भी एकदम आराम बात अपनों के एकदम आराम हुई भी करना भरपूर आसने बाटू जे जहां हुई भी खेतों में बारी में दुकान में मकान में काम में धंधा में बीजी में विप्टर में यात्रा में जहां रहे से भी कार्यक्रम में सहभागी जनते करी कार्यक्रम ऐटे करी के नाम अपने अर्जी करम अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुने के लग ऐटे करी हमारे स्टूडियो के लाइन एकदम खुला बा कार्यक्रम में सहभागी जनते करी ई दोपहर के समय हो अलसी के समय हो कुछ असम रमाइलो करे लग अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही के नाम अपने जानकारी कर दी। कार्यक्रम के शुरूआत में श्री गणेश करब एक रमाइलो गीत से गीत के पास समय नहीं बाटू डायल करते करी अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुने के लग 091-5-61-255 लाइन खुलेबा तब समय लगे इंजॉय करी रमाइलो करी ई गीत से

हजुर बिल्कुल रमाइलो सजना गीत सुन्ने सँगहरूको आफ्नै हुकनको लागि सजना गीत रहे वास्तवमा बरमासे सजना गीत प्रत्येक महिनामै काका कै जात कना चिज हे लक्षित बनाएल चैत जेठ महिना से शुरू जेठ असार श्रावण भदौ अस्त के माघ सम पुगल बाबा गीत अब के पर अस्त के वैशाख सम बाई गीत के पर त अब चाहिँ अस्तके गायक कलाकारको बर्मा सङ्गीत बाह्रौं महिनामा काका कै जात कना गीत चित्रण गरल बा यी हाम्रो संस्कृति हो संस्कार हो गायक कलाकार सोमती थारू और देश राजपूत गाउँकी आवाज मेरा हरि रमाइलो गीत के पास फेन से स्वागत करम अपनो के हाम्रो कार्यक्रममा सहभागी जनाइदि 99.5 61.2 55 सँगै हुने आजकल पानी फेन नै पर्थो काहे कि खेती किसानीको समय आइटी बा बिहार सबके जामगिल हुई सात लागत मिन और बिहार अब यी महिना के अन्तिम अन्तिममा असार के शुरूआत पहिलो हप्ता भित्र में लगभग अपने खेतवा लगे सुसार कर भी और खेतवा फेन एकदम लगे तैयारी कर फिर भी जोतना तैयारी कर फिर भी लागत में और जे जहां रहे से कार्यक्रम में चाहिए हम सहभागी जनाई मैं अपने हुकन लग मजा मजा गीत संगीत सुने नहीं पर बात हो ओके ई दुपहरी समय अलसी के समय है कुछ असम रमाइलो करेक लग अलसी के समय कुछ असम रमाइलो रह रंगीत कार्यक्रम में डायल करते कर भी 99.5 61.2 55 के लाइन खुले बा तबसम के कार्यक्रम के फेन से ठावर हमारे गीत जोड़ा अपने हुकन लग गीत के पास समय नहीं बात डायल करते कर भी 99.5 61.2 55 लाइन खोलेगा

हजुर डोला रे कमर मर डोला रे बिल्कुल रमाइलो गीत कार्यक्रम जोर्ली कार्यक्रममा बाटोमा मिसनको साथ दिँदै बाबु रत्नपुर मगर यो रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज मार्फत सुन्दीबारी सगारी कसिके दिन बिताइदी अपना गर्मी बा आजकल अपना घाम बा आफ्नो के दिन कसिके बित्ती बा कसिके अपने के समय बिताइट बाटी गर्मीमा मैं बारम्बार कठौँ अपन शरीर है ख्याल करके काम करबी अपन शरीर है अपन स्वास्थ्य है ख्याल करके चाहिँ अपने ओकरा काम मा जइबी और काम करे बाजी फेन अपन एक्चुअली मतलब शरीर है अपने फे बाँची और घाम है फे पंछाई का मतलब गर्मी है फिर पंछा पंछा के फे काम कर भी कल से हमन कुछ राहत मिली और हम इतना काम करबो कि हमारे शरीर में अत्या देर पानी निकलत के पड़ल पसीना तो पसीना के माध्यम से हमारे शरीर में पानी के कमी हुई सका तब मारे पानी चाहिए एकदम ढेर पीबी पानी चाहिए ढेर पीना प्रयास कर भी कहना मैं आपको कहना चाहता हूँ कि पानी बिना के हमारे शरीर कमजोर हुई सके कोई अलबटे लाइन में कॉल करना चाहे एवटे कहा से हजुर राम राम वहां संपर्क में नहीं हुई कोई बात नहीं हो कार्यक्रम में सहभागी जनते करबी कार्यक्रम मैटे करबी कार्यक्रम में अपने को हमारे रमाइलो सहभागिता रही का नाम है आपको जानकारी करम करीब करीब 1:45 बजे से हम अपने के हमारे कार्यक्रम में सहभागी जन भी कार्यक्रम में आई भी का नाम है आपको जानकारी कर दी फैन से एंजॉय कर बैठा रमाइलो गीत से गीत समय नहीं बाटू डायल करते करबी 91 5 61 255 लाइन खोलेगा

हजुर बिल्कुलै रमाइलो गीत सुन्नुहुन्छ यति भएर के खेसी व्यापारिक विश्राम लेना बेला हो गिल्बा एक्कासी सात कमर्सियल ब्रेक ओर जाए ब्रेक के पास मैंने बाटो रेडियो छोड़कर कहूँ पेने जेबी डायल करते कर भी सुन 91 5 61 255 के लाइन खुलाई बता समग्र एक खेसी व्यापारिक विश्राम

0: कौनो व्यक्ति है लिंग लैंगिकता यौनिकता सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय दमन दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पीट धक्का मुक्का चोट पुकैना गाली गलौज धाक धमकी अपमान कैना जबरदस्ती दुराचार अवांछित स्पर्श दबाव ओ शोषण पैसा में नियंत्रण रखना कौनो ठाव में पैसे नहीं देना बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखने से ओ भोगले से मौन नहीं बैठी। OCMC स्थानीय निकाय सुरक्षित आवास गृह महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र महिला सेल में संपर्क करी
1: अथवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100 महिला आयोग के 1145 बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी यदि हुईल देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाए। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मंत्रालय महिला समुत्थान परियोजना धनगढ़ी कैलाली
2: कर्णाली नमूना मावि टीका पूर्वक शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
3: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 मा कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
2: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अंक ल्याउने विद्यार्थी र खेलाडीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
3: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुरका विशेषताहरू
2: फराकिला कक्षाहरू
3: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको
2: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको
3: खेलकुद सुविधा
2: कम्प्युटर शिक्षा
3: स्वच्छ पिउने पानी
2: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
3: कर्णाली नमूना माध्यमिक विद्यालय टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 98584-24167
2: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
4: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैब पाछ से शुरू करल मने घर सिर्जार सेक्ल
5: अरे का करूरी बुढ़िया कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का
4: मिस्तरान बर्जन हो का घर हेरो ना पट्टा सुगुर बनैला बाट आल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा का टूफे ओस्ट बनी हो ना ओट्ट फे पटानी हुई कि गुंगुआ बुरो हो ना कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
6: UPVC ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848-5143-26।
8: आज भोलि दिनहुँ जसो सड़क दुर्घटनाका घटनाहरू बढ़िरहेका हुनाले दुर्घटना न्यूनीकरण गर्न बाटोमा हिँड्दा बाटोको एक छेउ भएर हिँड्ने बाटो काट्दा अगाडि र पछाडि हेर्नुका साथै इशारा गरेर मात्र बाटो काट्ने साइकल होसिया गाड़ी चलाउँदा न्यूनतम गतिमा हाँक्ने गरौं। कतिपय दुर्घटना आफ्नो नभई अरूको लापरवाहीका कारण पनि घट्ने हुनाले बाटोमा हिँड्दा सजग भएर मात्र हिँड्ने गरौं। साथै आफ्ना नानी बाबुहरू तथा घरपालुवा जनावरलाई बाटोमा छाड नछोडौं र आकस्मिक हुने यस्ता दुर्घटनाबाट आफू पनि बचौं अरूलाई पनि बचाऊ।
9: जानकी गाउँपालिका एक नम्बर वाडा कार्यालयद्वारा जनहितमा जारी सन्देश
10: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुअबेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना डाग देख पर्लसे हात गुरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाक बठिना हुइलसे कुष्ठरोग हुइसेक्ठा।
11: कुष्ठरोग महिला वा पुरुष जेहेफे लागसेक्ठा। कुष्ठरोगको शंका लग्दैकी लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी तीन मानपुरमा सम्पर्क गरी
10: महिला उग्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्नो घरक पुरुष उग्र मद्दत गरी।
11: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।

0: बुका पिए रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गतिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हरत।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लंग वो तो कहाँ टीकापुर मर अलग रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिए रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मर्म फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: ए रुको रुको रुको
4: के भयो किन कराएको यस्तो
3: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिन सम्म अनलिमिटेड रे
5: एनसेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
4: हो र
3: हो नि एनसेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
6: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
7: गरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
8: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
7: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
8: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
7: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
8: ई सेवा सबै सधैँ सँगै
9: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
10: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
9: पढाइ हुने विषयहरू
11: अनिवार्य नेपाली
9: अनिवार्य अंग्रेजी
11: सामाजिक गणित
9: ऐच्छिक लेखाशास्त्र
11: ऐच्छिक वित्त शास्त्र
9: ऐच्छिक अर्थशास्त्र
11: कम्प्युटर विज्ञान
9: भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू
11: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि
9: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि
11: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि
9: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ। थप जानकारीका लागि 091-560-738 091-561-446 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
10: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।
1: हजुर बिल्कुल लम्बा व्यापारिक विश्रामकै पाछा पेन्छ स्वागत छ कार्यक्रममा बाटोमा मिसेल अमिके साथ दिँदै बाबु रत्नपुर मगर भर्खर रेडियो खरल हुबिकाले यो कार्यक्रम छोटमी छोटमी व्यापने रोजल खोजल सोचल मन परल गीत हामीले सुनै थिए थारू भाषा के हो गीत सुनेक लगा आफ्नो हामन कल गरेक पन्नरहट 091-561-2 लाइनमा और हामन केहेक पन्नरहट यी गीत सुन्ने चाटो गीत मन पर्ने के कारण यी हो दुइठो और यी एल्बम के हो या फिल्म के हो के नाम बताइदिए अन्तिम एकजनाको नाम रेजिकल से हाम्रो गीत अपने सुनै थिए तो डायल कति गर्बी अपन रोजल खोजल सोचल मन परल गीत सुनेक लग तब समके लग मई देहोर नै बटवा के फेन्स एकठो गीत जोडम गीतके पाछा मै नै बाटो डायल कति गर्बी 091-561-2 लाइन खुल्लै बा

हजुर, आफ्नै मजा मजा गीत सुनेरी सुनेरी आफ्नै सँगै बात गर्दै गर्दै लभलभ कार्यक्रम के निर्धार समय डगर काटे लागल। टाटा बाबे के जना बेला हो गेल बाबु हमारा यात्रा रेडियो सुन के साथ दैले अपने सबको जन धन्यवाद। टेक्मी बाई के साथ दे बाबू रत्नापुर मगर है धेरै धन्यवाद। एकदमै गर्मीमा जहाँ रवि स्वस्थ रवि व्यस्त रवि और अपन ख्याल करके काम करबी। पानी एकदमै देउ बिबीका नाम आफ्नो जानकारी करती। अन्तिम एक ठोर रमाइलो गीत छोड़ती मैं मिशनाका छ। राम राम जय देव जय गुरु बाबा शुभ दिन आपके पास शुभ रहे। रेडियो टीकापुर एफएम सुनते करबी।

0: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलालीमा सामान्य चिकित्सा एसए कार्यक्रम अध्ययनको लागि भर्ना खुल्यो।
1: फारम भर्ने मिति 2083 वैशाख 29 गतेदेखि जेठ 13 गतेसम्म।
0: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुरे कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको आईटीएमएस अनलाइनमा भरि सबमिट गर्नुपर्नेछ।
1: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यसै कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ।
0: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ।
1: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ।
0: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
1: एसईई एसएलसी वा प्राविधिक एसएलसीको शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृति देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो।
0: नोट, सामान्य चिकित्सा एचए अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ। सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुर कैलाली, सम्पर्क नम्बर 0915602038, 9858487079, 9848677786 र 9845449997।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
3: मैं नहीं जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तू ही वहाँ पठाई दो। यहाँ हेल ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैल अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐटीबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
5: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
4: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर, फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बिजापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आउने बारेको सूचना। टीकापुर अस्पतालमा छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ताको सोमबार र बिहिबार बिरामी जाँच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग सम्बन्धी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल, टीकापुर, कैलाली।
1: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना। 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य र लकोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराई थी। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र, टीकापुर, कैलाली।

0: हेलो
1: साइली, के छ तिम्रो हाल?
0: ठिक छु। हजुर,
1: मलाई साह्रै तिम्रो याद आउँछ साइली।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेल इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इक्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड कापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
4: घरेको भए हैन गरिहाल्नुस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बीमा कभरेज न कुनै फाइनान्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
4: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
5: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
4: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
5: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो का कना हो। बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आन से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी, जरम भर भर बर थी राहत
0: का हुई। कबू लड़का कभी हेरा कही था, कबू पेंसिल हेरा कही था, कबू झोले फटा कही था, बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम
0: था, कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई झोला उडोक में से। वहाँ झिंगरान दीदी कटरास गोर झोला आन लाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन। ये बुढ़ो ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से कठुई।
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में। रख गई झोला उद्योग, हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए। पुरान बिगड़ा झोला है मरमत करा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: सबै बिरामी आखिर स्वस्थ रहन स्वस्थ व्यवहार पनि अपनाउनु पर्यो, तर यति हुँदा हुँदै पनि सबै एकलासो कहाँ हुन्छ र? कहिले कोही बिरामी, कहिले कोही बिरामी, म त दिक्क भइसक्यो, कसो कालले छिटो नलाग्यो।
4: होइन चाइनाजो माइलो के बरबर बरबर कराइरहेको छ, के भएको छ तलाई?
3: हेर्नु न साह्रै समस्या पर्यो क्या, कहिले के रोग आउने, कहिले के समस्या आउने, म त हैरान भइसके। छोरो उस्तै बिरामी छ, स्कूल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ, बा त्यत्रै बिरामी, सबै हैरान भन्या। म पनि यो पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ, भोक लाग्या लाग्यो हुन्छ, खानै सक्दैन।
4: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ, त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीमाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो।
5: हजुर, स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन्, साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्।
6: सम्पर्क स्थान चण्डीमाई मेडिकल स्टोर, ठकरौला रोड, टिकापुर, कैलाली।

0: चली भाई, एक घड़ी निकाली तो घर में
1: बाबू पानी।
0: हम फिर टूर ना देना
2: बरबर वाला
3: असो बर बढ़िया भी यार बावे ना
1: बाई का
3: बड़े जूर बावे ले वो हर भाई फुगा दे
1: ले भैया फुगा
0: अक्के घरिक बयाल अक्के घरिक पानी बरखा से होए।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम के संजक 5 बजे थारू भाषा के खोज खबर में अपने को स्वागत बा। खोज खबर से मई सीता चौधरी के राम राम। अपने हुकुरा सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संग अनलाइन में www.tikapurfm.org मोलाप साम्रपात्र और नेपाली पात्र में फेसबुक चैनल बाटी खोज खबर शुरू करी। खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से टीकापुर नगरपालिका के अंतर्गत के सामुदायिक विद्यालय में अब 1 ठोक किसिम के पीटी लागू करना। जाजरकोट में गाड़ी दुर्घटना 7 जना घाइते। जेठ 15 गते अपराह 4 बजे संघीय संसद के संयुक्त बैठक में बजेट प्रस्तुत हुई। ओएसआरडी छंड में नेपाल की विजय शुरूआत। चीन से ऊपर 19 रन की जीत। टीकापुर नगरपालिका के अंतर्गत के सामुदायिक विद्यालय में अब 1 ठोक किसिम के पथाना बनेना हुलबाट। सामुदायिक विद्यालय में बिहान के समय में करना पथाना व्यवस्थापन करना 1 ठोक किसिम के पथाना करना हुलबा। टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा के आयोजन में सोमवार और मंगलवार 2 दिन के कार्यक्रम के आयोजन करके विद्यार्थी कन ओह पथाना सीखल रहे। कर्णाली मावी टीकापुर के पीटी एच क्षेत्र केलाक उत्कृष्ट लक ओह पीटी हनै सक्कू विद्यालय में लागू करलक। टीकापुर नगरपालिका शिक्षा शाखा अधिकृत नरेश अवस्थी जानकारी दिलाबाट वहां के यही विद्यार्थी पढ़ना तैयारी अवस्था में अलग सहयोग करना मानसिक रूप में परिवर्तन करना हुईलक। यी सक्कू विद्यालय में लागू करना निर्णय कलक वहां बटिलो बाट पीटी सिकाई लाग सक्कू विद्यालय में से विद्यार्थी सहभागी करना हुईलबाट। जाजरकोट के हाइस गाड़ी दुर्घटना हुईलक। 7 जना घाइते हुईलबाट। छेड़ागांग नगरपालिका 13 कार्की गांव से नेपालगंज तर्फ गई लुप्र 01001 X0197 नंबर के फोर्स गाड़ी आज बिहान के मध्य पहाड़ी सड़क अंतर्गत भेरी नगरपालिका चौखे ढुंगा हुई ठाव में दुर्घटना पड़ा। जिला प्रहरी कार्यालय जाजरकोट के सूचना अधिकारी सुधीर कुमार खट्टा के अनुसार बिहान के 8 बजे दुर्घटना हुई। खबर पाई लगत प्रहरी चौकी जगतीपुर मस्से घटनास्थल में पुगे। घाइते एम्बुलेंस मार्फत जिला अस्पताल में जाजरकोट मनलक उपचार होती रह जानकारी दिलाट। सक्कू घाइते हुकन के खतरा मुक्त रलक जिला अस्पताल जाजरकोट जानकारी दिलाट। गाड़ी में सवार 8 जना मध्य गाड़ी चालक वर्ष 26 के खिमराज केसी सोकौशल रलक व अन्य 7 जना घाइते हुलक प्रहरी जनेलवा। दुर्घटना में पर्के घाइते हुनामा फेरी नगरपालिका 7 के वर्ष 27 के भावना बिक वर्ष 26 के आशीष बिक वर्ष 28 के त्रिसना बिक वर्ष 25 के लीला बिक रहलबाट। अस्तक भेरी 9 के वर्ष 22 के कमल परियार वर्ष 26 के कमल राज घरती भेरी के 10 के वर्ष 27 के तुलसा मल्ला साही रहलबाट। दुर्घटना कसी खुल सम्बन्ध में थप अध्ययन हुटी रहल प्रहरी जनेलबाट। राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 के नतीजा परीक्षा उराइल 45 दिन भीतर सार्वजनिक करना हुलबाट। बोर्ड नतीजा प्रकाशन संबंधी काम तीव्रता दिलाबाट परीक्षा उराइल 2 हप्ता भीतर के हुलबा। यही 20 मा बोर्ड नतीजा प्रकाशन संग संबंधित 50% से ढेर काम उराइलबा। बोर्ड के परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण शर्मा के अनुसार अब उत्तर पुस्तिका परीक्षण के काम आधा से ढेर बढ़ी ओराइलबा। परीक्षण होशियाकल उत्तर पुस्तिका के प्राप्त अंक संपरीक्षण समेत होके कम्प्यूटर में प्रविष्ट करना काम समेत हुईलवा। जुन विषय के उत्तर पुस्तिका परीक्षण ओरना वाकर संपरीक्षण फिर तत्काल शुरू करना हो। संपरीक्षण ओराई लगत प्राप्त अंक कम्प्यूटर में प्रविष्ट के काम हुटी रह शर्मा जानकारी दिलाट। नतीजा प्रकाशन हाली बढ़ेना बोर्ड के परीक्षा ओराइल दिन से नई उत्तर पुस्तिका के परीक्षण शुरू कर रहे। मुलुकभर के ढेर सिंह 42 केन्द्र मसे उत्तर पुस्तिका परीक्षण हुटी रहलवा। नियंत्रक शर्मा फिर नतीजा प्रकाशन के काम परीक्षा ओराइल 45 दिन नई पुगल ओराइल में ओहन से ढेर हाली प्रकाशन करना काम कटी रह कैके परीक्षा मुलुकभर में से 4,18,000 परीक्षार्थी सहभागी रही। बोर्ड एएचओ माध्यमिक शिक्षा परीक्षा यासीके नतीजा फे परीक्षा ओराइल 29 दिन में प्रकाशन कर लगे। जुन यासीके इतिहास में सबसे छोट समय में नतीजा प्रकाशन हुई रह। निशाघ यासी कक्षा 12 के परीक्षा के नतीजा प्रकाशन होना सामान्यतया परीक्षा ओराइल पास 3 महीना लगना कर रहे। खोज खबर में एकरी विश्राम विश्राम पासा फिर से विश्व त्रिवी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
1: के तपाईलाई थाहा छ
2: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन 100 वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी माटो वनस्पति जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
1: हो र
2: हो त हामीले तीनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
2: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौं।
0: के छ त विकल्प?
2: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं। पकाएको तथा झोल खानेकुराहरू प्लास्टिकबाट टाढे राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
2: हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
2: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली। पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार सत्कार पोलिक्लिनिक प्रणाली टिकापुरमा।
0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधिद्वारा गरिने।
2: समस्याहरू किडनी र मृगौलाको पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू,
0: महिनाको महिनावारी गडबडीको समस्या,
2: पाठीघर सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
0: पेट सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या,
2: गर्भवती महिलाको गर्भको अवस्थाको जाँच तथा परामर्श सेवा,
0: ईसीजी सेवा,
2: डिजिटल एक्सरे सेवा
0: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा।
2: फोन नम्बर 9844-27359 र 9848-43-59। सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टिकापुर जालपादेवी मन्दिर नजिकै।
3: शरीरमा लाल वा फुस्तर छुवेर ठहानी बिना स्पर्श शक्ति हेरेलको निखुन्जिना डाग देख पर्लसी हात गुरा झमझम गर्ना तथा मास सुहाको बठिना हुलसी कुष्ठ रोग हुइसेक्ठा।
4: कुष्ठ रोग महिला वा पुरुष जेहीफे लागसेक्ठा। कुष्ठ रोगको शंका लगे कि लगभग स्वास्थ्य संस्था वा साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँके जानकी 3 मानपुरमा सम्पर्क गरी
3: महिला उक्र अस्पतालसम्म आइक्लाको स्वास्थ्य परीक्षण गराइक्लाक आफ्न घर पुरुष उक्र मद्दत गरी।
4: कुष्ठरोग मुक्त समाज निर्माणका लागि साइनिङ अस्पताल INF नेपाल बाँकेसे जनहितमा जारी सन्देश।
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा। सरकार आर्थिक वर्ष 2083-84 के राजस्व व्ययकीय वार्षिक अनुमान बजेट जेठ 15 गते अपराह्न 4 संघीय संसदकी दुनु सभाकी संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत कर्णहुलबाट प्रतिनिधि सभाकी सभामुख दोल प्रसाद अर्यालो, राष्ट्रिय सभाकी अध्यक्ष नारायण प्रसाद दाहाल जेठ 15 गते अपराह्न 4 बजे संघीय संसदकी दुनु सदनकै संयुक्त बैठकमा डाक्टर सोनी मुआगले सरकारकी आर्थिक वर्ष 2083-2084 बजेट प्रस्तुत गर्न जानकारी गरेलबाट उहाँकी बजेट प्रस्तुत हुना सेध्यो राख 3:45 बजे नै सांसद थोकन बैठक हलमा उपस्थित हो कि आसन ग्रहण वरासेकना आग्रह कलबाट जेठ 15 गते नै अर्थमन्त्री डाक्टर सोनी मुआगले आर्थिक वर्ष 2083-84 के बजेट दुनु सभाकै छुट्टा छुट्टै बैठकमा टेबल गर्न हुना हुलबाट। अब तातुल हावाकी लहर चल्तिरहेवा पश्चिमी तराईकी क्षेत्रमा फेरि शुक्रबार पानी पर्न सम्भावना रहला। गर्मीमा कुछ राहत मिल्ला बा मौसमी थुक्र शुक्रबार बारकी देशकै धेर ठाउँमा पानी पर्न अनुमान कलबाट पानी पर्न क्रममा बिहिबार सन्झैसे शुरू हुना हो। शुक्रबार रातकै तुलनात्मक रूपमा बढ़ी हुना सम्भावना बा जल तथा मौसम विज्ञान विभागकी मौसम पूर्वानुमान महाशाखाकी मौसमविद रोजन लामिछानेकी अनुसार शुक्रबारकी दिन बिहानकै दिनकै से समय से ध्यो रात के बढ़ी पानी पर्ना संभावना बा मौसमविद लाइमी छाने के अनलाइन खबर में से फिर शुक्रवार नई 7 प्रदेश में पानी पर्ना संभावना असम की अवस्था हेलक हल्का से मध्यम खालके वर्षा हुना देख गिलबा। अब तातुल हावा लहर चलती रह पश्चिमी तराई के क्षेत्र में फिर शुक्रवार पानी पर्ना संभावना लग गर्मी में कुछ राहत मिलना विश्वास रह बा मौसमविद लाइमी छाने के अनुसार हाल नेपाल में पश्चिमी वायु स्थानीय वायु तथा नेपाल के पूर्वी भूभाग लगर लग निचापीय क्षेत्र के प्रभाव बा ओ प्रभाव बद्री बहनाओ मेगर जन चट्याङ सहित पानी पर्ना पूर्व अनुमान कलबाट ओसंक प्रभाव आज ओ कालफे कुश जिल्लामा हावाहुरी चल्न सम्भावना बा कुश मौसम विथुक्र सुदूरपश्चिम कर्णाली लुम्बिनी गण्डकी एक दुई ठाउँमा भारी वर्षा हुन सम्भावना रहेको जनेरबाट मौसम पूर्वानुमान महाशाखा के अनुसार आज पूर्वी व मध्यम भूभागमा मेघगर्जन व हावाहुरी सहित वर्षाकी सम्भावना रहलासेफे पश्चिम नेपालकै तराईकी जिल्लामा फे तातुल हावा लहर कायम रहन सम्भावना रहलबा। खोज खबर में फिर से विश्राम विश्राम पासा फिर से विष्णु तिर सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम।
5: आई हो बड्डो घर कहिया सिर्जैबो पाछे शुरू करल मने घर सिजार सेकल।
6: अरे का करूरी बुढ़िया, कठुआ खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटू, मिलबो मिलबो नी करत का कहना हो का।
5: मिस्तरान बर्जन का घर हेरो ना, पट्टा सुगुर बनेल बाट, अल्मोनियम के मुआ का द्वार लगा कर टूफे ओस्ट बनी हो ना, ओट्टा फे पटानी हुई कि गोंगुआ बुरो हो ना, कबू कहूँ घूम जाए तो था पाए।
7: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टीशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषतः हुईलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा जाए।
6: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848541426।
8: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडिन बागवान
9: जेठ 16 गते शनिवार का दिन
10: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले सम्पर्क गर्नुहोला।
8: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बढी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
10: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला।
9: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार
11: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक अस्पताल रोड टीकापुर टाड़ा का बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ। याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टीकापुर में अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ। संपर्क फोन नंबर 9868800008 र 9825637772।
12: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
13: ग्रीष्म टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्म टेरस टीकापुर कैलाली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठेक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008।
0: विश्राम पाछा फेरि स्वागत बा खेल खबर। एसियाली खेलकुद छनौट अन्तर्गत महिला क्रिकेटकै पहिलो खेलमा नेपालकै चीन 19 रनसे हटेलबाट मलेसियामा जारी प्रतियोगितामा नेपाल चीन विरूद्ध पहिलो जीत निकल्नबाट र जितकै सुरुमा ब्याटिङ कलक नेपालमा पूरै विश्वभरमा खेली 5 विकेटकी क्षतिमा 125 रन बनेर रहे। 126 रनकै लक्ष्य 45 चीन पूरै 20 ओभर खेली 5 विकेटकी क्षतिमा 106 रनमा समेटलबाट चीन केला कप्तान जु मेजु सर्वाधिक 30 रन जोडलर लसिफे वाङ हुईवांग के 21 रन थप्लबाट चिन्ह सस्तमा समेटक लाग नेपाल रिया शर्मा 2 विकेट के हात पलक पूजा महतो मनिषा उपाध्याय कविता कुंवर 1-1 विकेट लिलबाट पहिलो ब्याटिङ कलक नेपाल के लाग पूजा महतो अर्धशतक बनेर रहे। महतो 57 बलकै सामना कति 6 चौकाकै मदतमा 63 रन बनेर रहे। रूबी पौदारकै नट आउट 22 रन जोडलक सोनी पार्खिङकै 18 रन थप्ल रहे। चीन केला कसिलो बलिङ कर्तीमा रुई केले 2 विकेट हात पलक वाङ हुई इङ ओली ली च्याफिङके 1-1 विकेट हात पलबाट एसिया छनौटमा नेपाल रलक समूह बीमा चीन व इण्डोनेसिया रहलबाट नेपालकै इण्डोनेसिया संघ बिहिबार खेल्न हुलबाट समूह बी के नेपाल व चीन 2-2 अङ्क जोडल रहला से फेरि इण्डोनेसिया अङ्कविहीन रहलबा। समूह ए मा हङकङ मलेसिया व थाइल्याण्ड रहलबाट समूह ए के थाइल्याण्ड 4 अङ्क जोडलक मलेसिया व हङकङ अङ्कविहीन हुलबाट दुनू समूहकै शीर्ष 2 टोली छनौटकै सेमी फाइनल पुग्न हुलबाट सेमी फाइनलकै विजेता टोली फाइनल खेल्न रहला से फेरि पराजित टीम तेस्रो स्थान केलाग प्रतिस्पर्धा गर्न हुलबाट प्रतियोगिता के शीर्ष तीन टीम एसियाली खेलकूद के लाग छनौट हुई हुई यह समाचार संग खोज खबर बढ़ल जना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से एक चो टीकापुर नगरपालिका अंतर्गत के सामुदायिक विद्यालय में अपेक्षा ठो किसिम के एपीटी लागू करना राजापुर में गाड़ी दुर्घटना चार जना घाइते बजेट 15 गते अपराह्न 4 बजे संघीय संसद के संयुक्त बैठक में बजेट प्रस्तुत हुई ओएसियाली छनौट में नेपाल की विजयी शुरूआत चीन के ऊपर 19 रन की से पराजित गीजा बुकला खोज खबर रहा प्राविधिक मित्र आकाश चौधरी धन्यवाद डिटिया बुकला खोज खबर से मैं सीधा चौधरी विदाई टू एक पास 6 बजे की खोज खबर सुन सक भी सामुदायिक रेडियो टीका पूरा फिल्म सुनती रवि राम राम
14: तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई तहरा राजा जी का दिलुआ तृप्त जाई
15: उफ बल्ल घर भिटा निखौराइदा
16: मुस्कान रिथाई घर भिटा हामी नित्य निउराइ छौ कि का
15: हेरो यहाँ भित्ता मत ढिला को बा माथि तब दिए पड़ टीका हाँ तब दू
16: दाई सपका डरल खै खै कहाँ काटो छाई
15: अरे लेव हाली क्यों बाटो मचे मुस्कान बट सब पकार डरलस लेव हाली
17: काबिल काकी काबिल
15: हेरो ना राकेश मुस्कान न सब पकार लस कल
17: ना क्या काकी वो मुस्कान न्या क्या का शांत होकर बैठो ना बेन काकी मुस्कान न श्वास का न सुटाई फल सब निकल रखना
15: बैठा भैया मुस्कान छाई श्वास का सुटो टा
17: ओ काकी मुस्कान घलक लुगा घर गहना निकल जैना मेकअप फाफर बना दी ओ हाथक चुड़िया की निकाल दी वाकर कटलक हाथ भर नहीं चला ना
15: बुठा भैया सबो कटलक ठाक आंजर पांजर चिर कर इंजेक्शन ले तान कर अथवा मुंह ले चूस कर बीस पोर निकलना हो कि
17: नहीं नहीं काकी सबो कटलक ठाक आंजर पांजर कटना डगना चूसना काम करा नहीं हुई वो कुछ खवाई पियाई के नहीं हुई पानी के नहीं बुझली
15: ओसिनो कलसे झरमेरा लाख उहे निटार्ख वाकर सबो कटलक ठाउँ लगा दिउ त नानानु
17: उफेनी हुई काकी घरेलु उपचार जस्ता कि झरबैरा जंगली खरबुटी ओ जडीबुटी फे प्रयोग गराउने हुई बुझली
15: बुझ्नु नानु बुझ्नु
17: पहिला काकी रामेसना मोटरसाइकल लेखाए कहिट झट्ट से झट्ट साधन खोजकर एन्टी भेनम हिलक स्वास्थ्य उपचार केन्द्रमा लैजाई सेकजाई कलसे मुस्कानमा झट्ट चुम्बर बनाई सेकजाई दादाई का अपना बेन ओटरा बिलासम हमार गांव से फोन एंटी भेनम केंद्र लगा पर था कई का स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी का वेबसाइट खोलती कर तुम दाता हम कई का हरा पुरा हाँ हो स्नेक बाइट नेपाल डॉट ओ आर जी वेबसाइट फेक खुला हमार गांव से तो मिसहेक स्वास्थ्य संस्था को सर्पदन से उपचार कई जिना रही था हो वहां लगी जाए पुरा मुस्कान होना
15: राकेश नानू मोटरसाइकिल लेकर राकेश नानू आ गई
17: लेव लेव लेव काकी मुस्कान होना निहिला का मोटरसाइकिल का सीटक बिस्तम रोई ठहरारी का झट्टा से झट्टा सर्पदन उपचार केंद्र में फुगाई सीख जाए से मुस्कान होना बताई सीख जाए
15: बैठा बैठा याद करी सपवा दस से मोटरसाइकिल स्वयं से भी बलाई सर्पदन उपचार केंद्र में जाकर जान बचाई वहा कौन सवारी साधन उपलब्ध निहुलक अवस्था में वेबसाइट से स्वास्थ्य कर्मी फोन पत्ता लगाकर फोन में से सुझाव ली
18: उसे मुंह साइकिल स्थापन से फिर सावधान रह पठा मोल सपो है व्यक्ति की छूना चलेना करनी हुई कबू काल मोल के खा समझ साफ फिर काट से संभव हुई सम कटुया सपो फोटो खींच कर डॉक्टर अथवा स्वास्थ्य कर्मी देखाई सकल से मुक्र सब विषार अलग निरलग पहचान कई खा सही उपचार कर सहयोग उठा
15: यदि समय में उपचार कर से गई कल से सपो डसलक मन यहाँ बचाई सक दिखा वो यही मसे हुई ना मृत्यु दर फे कम कर सक दिखा सपो डसलक मन यहाँ झट्ट से झट्ट उपचार केन्द्र में ले जाई यही ऊ मन एक जिंदगी बचाए भारी मदद कर था भर पर्ना वो सही जानकारी लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैखा पत्ता लगाए लाग आधिकारिक वेबपेज www.snakebitenepal.org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै छ।
3: नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र, विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल, WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश।
19: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
5: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
19: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका?
5: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
19: अब त म ढुक्क।
20: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
5: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
19: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या, ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
5: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
19: ए यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
5: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
21: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
19: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
22: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
20: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
5: सम्पर्क नम्बर 0915604670 र मोबाइल नम्बर 9848571828।
23: तपाईँ सुन्दै हुनुहुन्छ समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
24: उहिले पुर्खादेखि चलिआएको रीति, यो रीतिलाई हामीले छोड्नु हुन्न। आउन साथी हो माया गाउँ, गाउँ झुमौ र सँगसँगै नाच।

0: विद्युत महाशुल्क भुक्तानी सम्बन्धी सूचना 2083 असार 1 गते से टीकापुर वितरण केन्द्र हो लम्की यूनिट कार्यालय अन्तर्गत के संचालित विद्युत महाशुल्क काउन्टर बन्द गर्न लक्ष्य र लकोर्से विद्युत महाशुल्क अनलाइन माध्यम से भुक्तानी गर्न सक्कु ग्राहक महानुभाव फुक्रान यह सूचना से जानकारी कराएती। विद्युत महाशुल्क अनलाइन भुक्तानी गर्न समय बिहान के 8 बजे से रात के 12 बजे सम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
1: ए रुक रुक रुक
2: के भयो किन कराएको यस्तो
1: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
3: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभीजको फ्री एक्सेस पनि
2: हो र
1: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
4: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक *123# डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि

0: Spotify download गर्नुहोस् नेपा एप
1: पाली मन को नेपा नेपाली पन को नेपा
2: ₹2 ₹3 ₹2 ₹3
3: कोहो तुम के बना तो ₹2 ₹3 ₹3
2: मुखे तो दिया ₹2 कोखला बसन दिया ₹3
3: ₹2 ₹3 ने को देली कोई मुखे तो कोखला बस
2: औतर सामान भाव बढ़ो छोटा छोरेटी को भाव घटो ₹2-3 लाई झिक्क हो ₹10 लिने है भाई
3: ठीक को अरि बार तुम आफै भन भन
2: ₹40 दिन्छु भाई
3: खुबै बाठा आइ छौ के आउँछ ₹40 नि
2: ₹50 दिउलो भाई
3: नै नै तुमसँग कुरा जम्दैन
2: अब त यो लास्ट हो यही भन्न प्रताप बर्थडे होइन ₹60 दिन्छु ₹60
3: की बात मुके जान्दैन तीन बेसी दिया मेरा कोखेला बस

0: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भए म त अब।
1: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्रेक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
0: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
1: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
2: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
0: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
3: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिफर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ।
4: सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
1: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
0: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
5: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होइसे उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए।
5: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तो मैं अब भी जाए।
6: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यही जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रप, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार।
7: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: घर त जेनतेन लगाइयो, अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला? काठ पनि सुन जस्तो महँगो, के गर्ने के नगर्ने?
1: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाई? काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो अल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न।
0: ए हो त, कहाँ पाइने रहेछ दिदी अल्मोनियमको झ्याल ढोका?
1: कहाँ हुनु भाई, टिकापुरमा जमरापारी छ नि मिलन अल्मोनियम ग्लास हाउस, त्यही जानु होला नि।
0: अब त म ढुक्क।
2: मिलन अल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली। प्रोप्राइटर मोहनदास भाट।
1: मोबाइल नम्बर 9848513426। जमरापारी, टिकापुर, कैलाली।
3: बिटल 25 वर्ष के लम्बा अनुभव धल डाक्टर हेमन्त स्वार्से टिकापुर म सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग आपन भवन से सेवा देती रहल सक्कु बेरम हेन जानकारी कराई थी। सत्कार पोलिक्लिनिक म बिहान 7 बजे से संध्या 7 बजे सम मेर मेरिक रोग के उपचार तथा स्वास्थ्य परामर्श देना हुईलक मार बेरम्हे उनका संपर्क कैके उपचार सेवा लेह अनुरोध करती। सत्कार पोलिक्लिनिक से दे जैना सेवा ओपीडी सेवा, डिजिटल वीडियो एक्सरे, ईसीजी सेवा, डिजिटल अत्याधुनिक भारी एक्सरे सेवा, नियमित ऑटो एनालाइजर से सबको रगत जांच, फार्मेसी प्रयोगशाला सेवा, हाथ जोड़नी सेवा, टूटल हाथ जोड़नी में प्लास्टर सेवा, ईएनटी सेवा, सुरक्षित मातृत्व सेवा, गर्भवती जांच सेवा, यौन रोग के परामर्श तथा उपचार सेवा संग तालीम पायल स्वास्थ्य कर्मी से क्षय रोग तथा कुष्ठ रोग संबंधी सेवा फेदे जाए। संपर्क सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड गोल चोक लग टीकापुर कैलाली। फोन नंबर 0915600595 ओ मोबाइल नंबर 9848423959।

0: सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम द्वारा जनहित में जारी संदेश
1: विद्युत महसूल भुगतानी संबंधी सूचना 2083 असार 1 गतेबाट टीकापुर वितरण केन्द्र र लम्की युनिट कार्यालय अन्तर्गत संचालित विद्युत महसूल काउन्टर बन्द गरिने लक्ष्य राखिएकोले विद्युत महसूल अनलाइन माध्यमबाट भुक्तानी गर्न हुन सम्पूर्ण ग्राहक वर्गमा यसै सूचनाद्वारा जानकारी गराइन्छ। विद्युत महसूल अनलाइन भुक्तानी गर्ने समय बिहान 8 बजेदेखि राति 12 बजेसम्म। नेपाल विद्युत प्राधिकरण वितरण केन्द्र टीकापुर कैलाली।
2: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।

0: बुका पिएरै ठ कबु पेन्सिलेरै ठ कबु झलै फटाका आजिठ का कना हो बाबा फ्यो ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से त लड़का सामान निहरै
1: ओहो ई बुढा लिखने का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कपी हेरा कै ठ कबु पेन्सिल हेरा कै ठ कबु झोलै फटा कै ठ बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नि छिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम त
0: कहाँ से लनबो वो त कहाँ टीकापुर म रलक रटगैया झोला उडोक म से वहाँ झिंगरान दिदी कटरास गोर झोला आनला बाटी ना कबु लड़का कहाँ पिएरै थी ना कबु पेन्सिल हेरै थिन ना झोला फाटल हुई थिन कैक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़ोक ढंग कबु पसल छानकन झोला नि आन स्याक ठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: नेपालगंज मेडिकल कलेज में कार्यरत वरिष्ठ यौन रोग मानसिक नशा एवं लागू औषध कंसल्टेंट न्यूरो साइकोट्रिक डॉक्टर आइनोडीन बागवान
4: जेठ 16 गते शनिवार का दिन
5: आरोग्य मेडिकल सेंटर एंड क्लिनिक टीकापुर में आउँदै हुनुहुन्छ त्यसैले यौन रोग मानसिक तथा नशा एवं लागू औषध संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले संपर्क गर्नुहोला
3: लामो समयसम्म टाउको दुख्ने बडी रिसाउने झिझो मान्ने बरबराउने अमिलो व्यवहार गर्ने कामकाजमा मन नलगाउने एक्लै बसेर टुलाउने भोक नलाग्ने निन्द्रा नलाग्ने दुब्लाउँदै जाने धेरै रक्सी खाने लागु पदार्थ सेवन गर्ने
5: त्यस्तै बच्चा तथा वृद्ध ओछ्यानमा पिसाब गर्ने स्मरण शक्तिको कमी तथा पढाइमा कमजोरी छारे रोग मिर्गी र बेला बेलामा बेहोस हुने समस्या नकारात्मक सोचाइ आउने यौन सम्बन्धी सम्पूर्ण समस्या भएका बिरामीहरूले अग्रिम नाम दर्ता गराउनुहोला
4: डाक्टर आउने दिन जेठ 16 गते शनिबार
6: डाक्टर भेट्ने समय बिहान 8 बजेदेखि 12 बजेसम्म बिरामी जाँच गर्ने स्थान आरोग्य मेडिकल सेन्टर एन्ड क्लिनिक अस्पताल रोड टिकापुर टाढाका बिरामीले फोन मार्फत नाम दर्ता गर्न सक्नुहुनेछ याद गर्नुहोस् आरोग्य मेडिकल टिकापुरमा अबदेखि भिडियो एक्सरे सेवा उपलब्ध छ सम्पर्क फोन नम्बर 98-68-80-0008 र 98-25-63-77-72

0: का हुई कमल अहन भूख खाइल बाट उठ
1: एरी ने काका आई फुला टूरे बारी में गेल रही तपो काट देली बीस निकाल देवी की कह के लेके आयल बाटू
0: सपो कटलक बीस तक उपचार कर सर्वदम सब उपचार केन्द्र में ले जाए पठा कहूँ कमल भाई वहाँ दक्ष तथा तालीम प्राप्त चिकित्सक हूँ बिखार सपो कटलक हो कि नहीं हो के पट्टा लगा कर सर्पदम से उपचार में प्रयोग है ना एंटी वेनम से उपचार कर
1: सर्पदम से उपचार केन्द्र के विषय में मैं फिर सुनल कर रहूँ तर
0: तर कुछ दिन कही आया ना तुरंत उपचार केन्द्र ले जा रही नेपाल सरकार सर्पदंशक उपचार कर एंटी वेनम समेत निःशुल्क उपलब्ध करे था अत्यक्ष चिंता नहीं पड़त
1: खाई ना तब ना तुम कुछ फिर नहीं हुई मैं एम्बुलेंस आना फोन कर सकली बात
0: एम्बुलेंस आपूंगा समय लागत के था मर छवा संदेश मोटरसाइकिल में बैठा कर तुहन उपचार केन्द्र में ले जा दी ले बाबू संदेश मैं रोकर छत से बाहर आता
2: सर्पदंश प्रभावित जिला में बेरमहन का समय में जो उपचार के खर जान जोगिना उद्देश्य ले सर्पदंश उपचार केन्द्र संचालन में बा ई उपचार केन्द्र में सर्पदंशक उपचार निःशुल्क हुई था सापन का कटाई ले मनन का मृत्यु न हो सरकार सर्पदंश उपचार में प्रयोग होना एंटीवेनम निःशुल्क उपलब्ध करेलबा आपन लखरहल सर्पदंश उपचार केन्द्र संपर्क नंबर ठहरा पठा सर्पदंश संबंधी भर पर्दो हो सही जानकारी प्राप्त कर ओ लगभग सर्पदंश उपचार केन्द्र कहाँ बाक पत्ता लगाई लाख आधिकारिक वेब पेज www.snakebitenepal.org में हेर सेथा
3: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
4: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कञ्चनपुरको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना
5: सिटीभिटीबाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 लागि 3 वर्ष प्रमाण पत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी CMLT 30 जना सामान्य चिकित्सा HA 40 जना नेत्र विज्ञान OA 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी DPH 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ
4: भर्ना कार्यक्रम
5: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गते देखि
4: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
5: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.cityvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि SEA कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ
4: आवश्यक कागज पत्रहरू
5: SEE SLC उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
4: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
5: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
4: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
5: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
4: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
5: सम्पर्क नम्बर 0969509044 98